बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे।

कहे कथे न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किन न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कतीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श कतीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै केते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला की जा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया

तो पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे ना रजै, तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे।

नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे चोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

पौड़ी। आपे अस्था तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस दी तैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा, नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए शब्द सो चित ना लावई, जित सुख वसे मन आए तामस लगा।

छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू एह लाए हो, सतगुरु का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अगे हर सो केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारह बनस्पत आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पाव

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे है अपने भगता की पैरी पावे है धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केकी चक चक आवे जावे श्लोक महला की जा राम राम करता सब जग फिरे राम न पाया जाए अगुम अगोचर।

नानक आप अमयो है गुर कृपा ते रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा

तुर खसमे का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पद

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ पा

प्राप्त होए। इस जोगी की नगरी सबको वसे, पेटी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस पट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन, आपे आधार, आपे सुख।

सतगुरु मोह को हर दिया, सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम से आया रहाओ, ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वरते सब अंतर सब ना करे सतपाला, नानक इक्कस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला। बड़ हंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है, गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी

ए मन नाम निदान तू पाए अपने गुर की मन लै रजाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए परमे पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया गुर प्रसादी मन वसाया वडहंस महला तीजा हौ मैं नावे नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए हौ मैं विच सेवा ना हो वई ता मन बिरखा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हौ मैं जाए रहाओ हौ मैं सब शरीर है हौ मैं ओपत होए हौ मैं वड़ा गुबार है हौ मैं विच बुझ ना सके कोए हौ मैं विच भगत ना हो वई हुक्म ना बुझिया जाए हौ मैं विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले हौ मैं गई ता सच वसिया मन आए सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हाओ क्यों मिला मेरी माया हाओ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाओ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हाँ क्यों कर फिर को मिलो एआनी जो फिर पावे सा सुहागन साई फिर को मिले सियानी रहाओ मैं विच दोष हूँ क्यों कर फिर पावा।

मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा सिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए पुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्का फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी तोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम से आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले सो हर हर नाम सदा सदा समाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर तेती।

रहाओ लाख भगत जाको आरा दे, लाख कपी सर कपी सा दे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वढांस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे, रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना, वढांस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को सब

सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राशा। वड़हंस महला पंजवा।

जल शल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कह निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हौ वेता। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेशा। मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरसा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए। हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अन दिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पए अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन

एक कारम तारम ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे राज तेरा कब हो ना जावे राजो ता तेरा सदा नहीं चले एहो कब हो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हों बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे जब

करो कृपा ले हो जमो बारे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हो आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी किच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम, आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती, उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिरके रंग रती मोये, सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये, पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी, कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये, फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली, फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा, फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुइये, जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये, जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने कामन वड पागी, अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया, नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया, हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो।

माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधै विकारा राम बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावै पत कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछू न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया सच है केवा पारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नदर करे

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम। माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा। गुरमुख होवे सोई बूझे, सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले, होर कै

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच।

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोह खुआई। एह जगत जलता देख के, पज पे हर शरणाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर न दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया।

नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नमंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस महला चौथा। हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम से आया।

हर आपे मिले करे सो होई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई, बहुत सियाणप लया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिना

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो जिनी हर हर नाम न प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया। हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया हर रोग तय शरीरा। अनदिन सहज सम

विखंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वट पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुणगा।

महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै सा

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सहज समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सत गुरु बाणी श्लोक।

जन सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम दिनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख लेहो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

प्रभु के मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सुरैणी सदा हर हर त्याय है। दरवाजे अनहतवा जे राम, कट कट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा विराजे, अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा। आप पाए आप।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकुम छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई।

लेख लिखाया लिखेड़ा साहा ना टले जेहड़ा पुरब कमाया बह साचे लिखिया अमृत लिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहुरंगी गल तागा होछी मत पाया मन होछा गुड़सा मक्खी खाया ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया।

सा तन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग अंदिन रस भोग, सा तन मैल समाणी।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्दे ना जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का तो

नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए, बिन गुर हर नाम।

पुरख विधाता, हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम सुखाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा को पाए गुरु विचारा। हर से रंग राता सब दे माता होमे तले विकारा। नानक नाम रखा एक रंगी शब्द सवार हारा।

जो चले पाई विचर चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई फिर पछोतावे हर के दास सुहेले भाई

उल्टी भाई भाई जीव तुम्हारे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाए जिस ज्योति ज्योत मिलाए मंगे हर हर से ती लिवलाए मन हर जप मीठा लागे पाए गुरु।

हारे। गुर शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा, हर पहला।

सतगुरु सेवै तां सुख पावै नाहे तां जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण ताप बहु कर्म कमावै हर रस साधना आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वड भागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा कृपा से विचों आप गवाए। यो जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुर मिले ता

तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहो त्रै गुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हों मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

कुछ नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिज्क समादा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खिलाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे ही आप निर्मला प्यारा, आपे निर्मल सोए, आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा, आप लखावे सोए, आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड अवर न कोए, सब कट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरुष सब सोए, नानक गुप्त वर्त दा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सूरत मैला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप थापे, आपे वेख विकसदा प्यारा, कर चोज वेख है प्रभ आपे, आपे वंचन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस प्रापे, अमृत नाम महा रस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, रहाओ आपे तीरथ तुलहरा प्यारा, आप करे प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे।

है, आपे ही सब ताप है, आपे सतगुरु आप है चेला, उपदेश करे प्रभापे, आपे नाम जपाइंदा प्यारा, आपे ही जपदा पे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे, सूरत महला चौथा, आपे कंडा आप सराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुरपूरे मीठा लाया, रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वक्ता प्यारा, जल माटी बंद रखाया, आपे ही पौ पाइंदा प्यारा, बन बकरी सिंह हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वर्तदा प्यारा, तै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाइंदा प्यारा, सह लेंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया, सूरठ महला चौथा, आपे सृष्ट उपाइंदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगर सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुर न आवन जान, रहाओ आपे ही गुण वर्तदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराएगा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराएगा प्यारा, आप दिवावे मान।

आपे शब्द समाहा, आपे लेखन आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओ माहा, अंदिन अंध होवे वडपागी, ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावल।

जाहा कर बालक रूप उपायदा प्यारा चंदूर कंस के सुमाराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदाहा सब आपे जगत उपायदा।

रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई,

चार साध संगत को वारिया भाई, जिन एक ओंकार आधार कोई सब आराधना पाई, जिसते सब किछ हुए गुर पूरे जानाया पाई, तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई, गणत न जाए गणी, बिन सच सोच न पाईए भाई, साचा अगम धनी। आवन जान न चुके भाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा भाई, दे नामे एक कणी। सिमरत शास्त सो दिया भाई, बिन सतगुर परम न जाए, अमित कर्म कर था क्या भाई, फिर बंधन पाए। चारे कुंडा सो दिया भाई,

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट चरना, मैं बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्द अचेत चंचल चित, तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे आप न थापे, साध संगत बुध पाई, साकत का बतना यूं जानो, जैसे पान चुराई, ओत पराध अछाद्यो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो प्रभु, सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृह बनता, माया सन बंदे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तुम।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण परावन हार स्वामी, आपन हाथ

करते हैं जन सेवा, हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोह गृह अंग कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकि तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण सूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुखदाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल सामग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होइए काहू जतना, ओड़क को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध

पूरन सत बिचारा। सूरत महला पंजवा। खोजत खोजत खोज बिचारो राम नाम सत सारा, किल बिख काटे निमख अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई, करण कारण

साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखबा आया आग बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सोरठ महला पंजवा।

सागर सर्व घटा भरपूरी रे, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जान्या दूरी रे। हर व्यंत हौ मित्र वर्णो, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गर्वास न करिया रे। सोरठ महला पंजवा, जिना बात को बहुत संदेशरो, ते मिटे सब गया, सहज सैन अर सुखमन नारी, ऊद कमल दिखाया।

ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना से जन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन।

निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो तुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साव लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु ताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का कोखा तर मुराए अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे। सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

मन पावे। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द प्रम का गावे। कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सभा से आये है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी। रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई।

साथी दरगह माने गुण गावत आराद नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाऊं प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंगरा।

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस ताके, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई। नानक दास पांके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने। जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने। रहे न कछु वह छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक बिकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। देख वाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई। काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई। सूरत महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित पाणी। सौखाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये। हर विसर न कभू जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे। जिसनो कर्म परापत होवे सोजन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुरचरणी मन लागा। गुण गावत अचुत अविनाशी अनदिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली। आद अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली। सोरठ मेला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी तारी। संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी। रहाओ सर्वपूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

समायो सोरठ महला संन्यवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन कै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्ण।

पुरुष महिला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ एती तरते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवां अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई। गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संत प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख विनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिर

गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी अपना बिरज संवारिया होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली रहाओ सतत उदाहरण सतगुरु मेरा मोहित का परवासा बख्श ले सब सत

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो।

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र

बढ़ाए पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंधन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सोरठ महला पंजवा कारतीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुका।

गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराछत लाथे, मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा, जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याये। हम दिन सुकृत करिये रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सिसलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

आसन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरत मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम।

आई सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

तुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभ करण हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एह पूरन विमल विचारा कर कृपा।

हर संग सहाई पाया, जह जाये ता सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी के संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, पतित पुनीत कर दीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहने

वैदिस छत्र मेघ कटाकट दामन चमक डरायो तेज के नींद नौ नैने फिर परदेश सिधायो हूं।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्व गुना निद गायो, सर्व गुना निद रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

भी माया तारी, नाम परे ओ भगत गोविंद का, ए राखो पैज तुम्हारी, हर जियो निमाणिया तू।

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यागत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

दोपदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर स्नाना, गुरपूरे कीने दाना। सब कुशल केम प्रभ तारे, सही सलामत सब थोक उबारे, गुर का शब्द विचारे रहाओ, साध संग मल लाखी, पार ब्रह्म पयो साखी, नानक नाम।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

प्रभ अपनिया संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुवाखिया सोरठ महला पंजवा सोई कराए जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, हर बात सुनी पग

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए

हर हर हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

वाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

हमारी, प्रभु राखी तेज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई।

कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सोरठ महला पाया।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाइए। रहाओ जो कामी काम लुभावे क्यों हर दास हर जस भावे। जो माता

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभु सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभु अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोष पया संसारे गुरु पूरे ले तारे संतो प्रभु मेरा सदा दयाला संतो प्रभु मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यों परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत।

परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तैना हिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने।

करे जहाँ से भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन सुन करी कौन नाम गुरजा कै सिमरे पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहि जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जा को कहत गुसाई सो तुम ही मह बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा माई मैं के विद लखो गुसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

सूजत नह कच ज्ञान काट ही पीतर बस निरंजन ताको मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी।

संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो नाहे मान अप

आगी शब्द मन वेद्या मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पैर रचिया गुर की कार कमावे। एको चेतै मनुआ ना डोले पावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसे सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूझी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी निज कर तारी लाई।

करम सुकरम कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाख्या से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथै का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई करम तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई

सिर कै पारी, दुर्मत कणे विगूती पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न ना पाए पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजै पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजै पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हवथ। गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए।

रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाए, मन मुखा नो प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ, गुरमुख हृदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ, कूड कपट पाज लह जासी, मन मुख फीका लाओ, भगता विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाव मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सद बलिहार जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई है पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसे पाई तिस बिघन न लागे कोई सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागनी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावने पाई आप

मन हथ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपाल।

प्रम्पो हो वै नाथ मिल संत सवा मन मांझी है पाई हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल हो वै प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासिय पाई हृदय होए प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुण यारे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर। सास गिरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर। जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई पौजल नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्व दुख सागरो प्यारे तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनों की तो कर्म

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहे विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरण आए।

पहुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लाल अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्यान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए बिद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हों हों करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाज लगाए एह मन वस

सके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर सके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हो मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा हो मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाव पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया काल ता

फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सबदे मेल मिलाए मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया से दरगह पेंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। सिर हर नाम तियावे जो हर रत्या, हर इक तियावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम तियावे।

सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार जिथ विच अमृत प्रगटिया करम पियावन हार नानक सच सलाहिए तन सवारन हार।

तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कहे विचारा गुरमुख।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए, अंदरों बारों अंधिया सुध ना काई पाए। पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रते हर नाए। जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए, पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही, ना कन पल्ले पाए। पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए, कूक पुकार न चुकई ना संसार विचों जाए। नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी, हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिस हो बल जाई, गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई। हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई, बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा, पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुगचार। त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

पाए, मन हठ सहज न बीजियो, उखा के अगे खाए, नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले साहर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दया।

करें। क्यों गुरुमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाई।

पौड़ी। जो हर नाम त्याय दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया।

साए बिन सतगुरु नाउ न पाये बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुग चार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुख तृष्णा पुख न जा

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाने।

पहला चौथा। हर दासन से प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वस है जो जंती के वस जंत, हर के दास हर के

आप ते सुन गोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई।

न पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निर्थत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

खारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट भोग वह सोई। कह रविदास।

तीन पकरफा क्यों अर काट्यो राम कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी आपन बापे ना किसी को पावन को हर राजा मोह पटल।

मारा चरमटा गांठ न जनी लोग गठा वे पनही राव पार नहीं जे तोपो नहीं राम भी ठाओ रोपो लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हाँ बिन गांठे जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा मुझ जमस्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जा।

दिन चुप चुप होए रहाओ तनाश्री मेला पहला। हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसै सरेव हो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिललाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरिया समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए, श्री मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिय होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अद्धि परवान, नानक जाने जान सुजान, तना फ्री मेला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे कड़िये तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रुपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी कूड़ बोल मल खाए,

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आम लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस पद गंध इव चलत मोही, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम जिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम।

वड़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा।

आए अपने पथ खोए, गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पथ उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा भावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए।

जन सोए, जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावे, पांच मन की सो जी पावे, मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध सा दै जन कोई, अचर चरे तौ निर्मल होई, गुरमुख ए मन लया सवार, हौ मैं विच्चों तजै विकार, जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे प्रब जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने, त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गवार, मनमुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए, काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मनमुख पूले सब मरें गवार, पर जल डूबे ना

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान है।

जो हर सेवै संत तगत तिन के सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो, मल पाटी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। त्रैश्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आग कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम ता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। त्रैश्री मेरा चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम तिसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल, सब के लिए पाप लह जानी। रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जप्यो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाती पूख पुकानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊचे, तिन हर जप्यो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। त्रैश्री मैला चौथा।

पाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली राव, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली, तनासी मेला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती, हर बिन रह ना सकूं एक राती, ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ, तुम हर सर्वर अत आगा, हम ले ना सके अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती, हर के संत जना हर जपियो, गुर रंग चलू ले राती, हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुर पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग बए हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सद प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर दिनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मेला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हूँ तिनके सब दलिहारे जाऊं। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम दियो सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत परमानी।

नहीं रहा, आपे गुरचेला है, आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से, और सब त्याग को है हर पानी, त्रासी मैला चौथा।

ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे ओट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सो है दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फाक्यो ओ परवस कहो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना असरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला तन्या कर कृपा दियो मोह नामा, बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी, अनन बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाड़ी। रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई, ब्रह्म प्रसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं।

कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परदास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पथवस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत।

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न पूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के नानक।

मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए जाको फिर ए तावे जाको गुरदीनो ए अमृत किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत ताकी कीमत कहन न जाई काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मनता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला तनासी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद इहा उहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पतपूरी नाम लैच कोट अगमा से भगत बांसे सब तूरी सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार कराना शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत सनातरी मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई साफ साफ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक पेसो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप तगत खा पूरी जो प्रभु कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अघाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभु की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनातरी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे।

कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझ।

प्रिय सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रात्री मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहुदैन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव जात ताप तमन गसबा कर उर्द ताप ले गैन ए बिद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिल पीतर, सगला रोग बिदारिया रहा, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, फुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो अपना कर, बिरथा

आप तरन तारण हर निज दुख न सकै ब्याप। साधु संग पजो गोपाल आम संजम किछ ना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ। आज अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। देव सिमरत कथे शास्त्र भगत करें विचार मुक्त पाए साध संगत बिनस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक श्री मैला संजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम से आया। तांते मोतारी ओत गोपाल शरण परयो पूरन परमेश्वर बिन से सगल जंजाल रहाओ। सुर्ग मृत कयाल पू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस

नाल संग ना चाले तिन स्यों हीत जो गहराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा साथ तरम नहीं पावे दीठा चूठ तो क्यों रचो मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तरम सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताने जो तुद पावे सो परवान तेरे पाने नो कुर्बान नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत ताके आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के भगत गोविंद सुख संतन के बिन सी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कत डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सवठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सही पगत जे साचे भाने जम काल ते पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार काट काटे अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ, मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो, जीवन देवा पारगम सेवा के उपदेश मोको गुरदीना जियो, किस त्यों ना लाइए हीत जा को किस ना ही बीत, संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध, जा के संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा की जय। थना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार, देख सगल है फीके, एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौजल तारे रहाओ, सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई, जत सत मोहे रखवाले।

गुरु का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले रहाओ, निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले, सनासरी मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई, संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का, रव रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम से आई, सनासरी मैला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी, जे को अपनी ओट संवारे, जैसा अभित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हारे रहा, आन त्याग पे एक आसर, शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए, सनासी मैला पंजवा, जान को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै, जा का सतगुरु पूरा, ठाकुर गाय आत्म रंग, शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही, सनासरी मैला पंजवा, जतन करे मानुख डैकावे, को अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुह कर पावे, पेख करे निर्वाने, जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताके उतते उत पेखे, आवे लोभी फेर, रहाओ, जब लग तुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त न कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, सनासरी मैला पंजवा, नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा, जन को नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो होग रहाओ, नाम तन जिस जन के पाले, सोई पूरा शाह, नाम व्योहारा नानक आधारा, नाम परापत लाहा, सनासरी मैला पंजवा, नेत्र पुनीत पय दर्श देखे, माथे परों रवाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल, तुम तो राखनहार दयाल, सुंदर सुगर बेअंत पिता, प्रभु प्रभु के पाल, रहाओ, महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को, नानक बांधे उपाल, सनासरी मैला पंजवा, अपनी उकत खिलावे पोजन, अपनी उकत खिलावे, सर्व सुख भोग रस देवे, मन ही नाल समावे, हमरे पिता गोपाल दयाल, जो राखे मैं तारी बार तो, तैसे ही प्रपाल रहाओ, नीत साजन सर्व गुण नायक, सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत कत तत तुम ही, मिले नानक संत सेवा, सनासरी मैला पंजवा, संत कृपाल दयाल दमोदर, काम क्रोध बिख जारे, राज माल जोवन तन जियरा, इन ऊपर ले बारे, मन तन राम नाम हितकारे, सुख सहज आनंद मंगल, सहत पवनिद पारे तारे रहाओ, तन सो थान तन ओए पवना, जामे संत बसारे, जन नानक की सरदा पूरो, ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे, सनासरी मैला पंजवा, छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परा।

एक नाम दियो मन मनता दिलस न कतहु जात सतगुरु पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभु अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभु अपने सुख पायो दिन रात नासरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी त्रासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा कीनो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन।

औखी करी न देखन दे, अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रपाले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आब अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के, अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। सनासरी मैला पंजवा, जिसको बिसरे प्राण पत दाता, सोई गनो अभागा, चरण कमल जाका मन राज्य हो हमें सरोवर पागा, तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस खीज गया सब तन के, प्रीतम स्यों मन लागा रहाओ। जय जय पेखो ते नारायण, सगल कटा में तागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब नुरागा। सनासरी मैला पंजवा, जन के पूरन होए काम, कली काल मां बिख्या में, लज्जा राखी राम राव, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की खाती, कोट सुख विश्राम, गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन, नानक सद कुर्बान। तनासरी मैला पंजवा, मांगो राम से एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम रहाओ, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पावो, शोक अगन में मन ना व्यापे, आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मधंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुर जन्म न छापन। सनासरी मैला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानक को जाचत श्रम पाये, प्रभ के सिमरन मोख रहाओ, कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कोखे, कृपा चंद सेव सच पाई है, दोवे सुहेले लोक, आन अचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पे काटे, मिल साधु बिन से सोक। सनासरी मैला पंजवा, तृष्णा बुझे हर के नाम, मां संतोख होवे गुरबचनी, प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ, महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम दे जप जीवा, पूरन होए दास की काल, सर्व मनोरथ राज सुख रस, सब खुशियां कीर्तन जप नाम, जिसके कर्म लिखिया तुर करता है, नानक जन के पूरन काम। सनासरी मैला पंजवा, जन की कीनी पार ब्रह्मसार, निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तें तें स्वामी, कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला होआ, जाता अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साधु पूरे। प्रभु बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जी जय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा रहाओ। कोई हो आकर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख हुए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कच पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कच ज्ञान न उपजो, पत्यो दर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुते खे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया।

आए नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पै उदासा मन मैले सूचा क्यों होए साथ मिले पावे पत्सोए आचारा विचार शरीर आज जुगाद सहज मन तीर पल पंकज में कोट उदारे कर कृपा गुर मेल प्यारे किस आगे प्रभ तुझ सालाही तुद बिन दूजा मैं को नाही ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पाए।

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिलना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात।

तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ करनी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी, साच साचे भावे। आनंद अनदिन हर्ष साचा, दुख किल विख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुरु पुन दान दयामते। तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी ता संगम सत सते। आराध एकंकार साचा, नित दे करे सवाया। गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब को एके वड आखी है, हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे, शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई। नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। सनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाऊ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया, फेर न सके कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाए, सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवरना दूजा, नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो। एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो। दो रहा चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सबक सिंजापे, साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर के शब्द विकाने। पारस पर से पारस होए, जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे, साचे के वापारी। भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो। सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो। सच नाम ते आए साच चवाए, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, अंदन नाम वखाना। करनी कार तुरु फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी। सनासी संत मैला पहला। तिर संग मूठड़िए खबर न पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख न मिटई पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होसी। गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी। तन जो बन आख की छाया, दिल्द पै दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुन्या।
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मेलो, हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, हम दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो, झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो, झूठ अलावे काम ना आवे, ना फिर देखे नैनी अवगुणियारी कंत विसारी, छूटी विदन रहनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, तन सुहागण नार जिन फिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो, हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती, तिर रलियाला जो बन बाला तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप देसा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी हम दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा। नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर है। सब संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो, अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे, सबा अतीत बैरागी, हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सो दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे, सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हो मैं रोया, मेरी मेरी करत रिहावे, जो प्रभ दे तिस चेते नाही, अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया, दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया, अन दिन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम से आया। नामो नाम मिली वडे।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुन जाना। चार वेद अर सिमरत पुराना,

काल एहेरी फिरे बदक ज्यों कहो कवन बिद की जय। सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने ताको अचरज काहो जो जल जल में पैसना निकसे त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन कांसी तजे कबीरा रमैये कहानी हो रा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई परम न पूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो ओछे तप कर बाहुर एबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिबे बड़ियाई अंत न चाहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तम ही छूटो जो माया नह लिपटाओ माया नाम गर्व जोन का ते तज दर्शन पावो इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला जो कोकिल को अंब बा

रे मन रामैया बारिक कौ जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना तर्क नचा

शरणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी ले

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। सना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कौन अबोल रहा हो बहुत जन्म बिछरे ते मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ। साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पै उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे ना पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण। बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदते त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राज।

कायो धूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया चादननी का अनाज मंगो सब्जी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सारकी गीहन चंगी जन तन्ना।

मंगी। जैतसरी महला चौथा कर पहला चौप दे इकोंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा। जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दी जय जन नानक चले मिलन था। जैतसरी महला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैतसरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे। मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नामे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना। जैतसरी महला चौथा। सतगुरु साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरु बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतित पवित्र मिल साध। गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्श न पाएबा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैतसरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांजा। तिन सुन्नी दे

साजा, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री मैला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा। रहाओ साकत बंध पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा। हर कै अर्थ खर्च नह साके, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैत श्री मैला चौथा। कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुणगाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ

मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमा राम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभ पावे, गुरु नानक नाम ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत संग ओ महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप ओ महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा, हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक।

देहो संदेशरो कहियो प्रिय कवियो विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो बेकुमार बे अंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहाओ सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से प्रम अंधेरा थान सनंतर सबनी जाय जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहाओ ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ, समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौ पाय।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास पयो उर अंतर शरण गही कृपा निज तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा पै मरबे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया नाहन गुन नाहन कछ जप तप।

नामा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो ए संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तुहारे, पायो ना इतने पारा, सो स्वामी तुम लिकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को, कबहू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो।

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। छंत। सुन यार हमारे सज्जन, इक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हों फिरों खोजंतिया, तिस दस

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुरु पूरा।

चाले हौ किस चिते या हिक दू हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा में पाई वर लोड़ींदा आया वजी वधाई मां मंगल रहस थिया पिर दयाल सद नवरंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया कीने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्याओ सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बसन न देवई जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

बस हम तो स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड़ तम

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिष्टं नचमिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दास मिष्टं प्रभु दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

परवान जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय के मनीष पुजाई वडे भाग सत्संग होए।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एके नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत ना ए मन लायो। विकस्यो पेख रंग कुसम को परग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन कोख्यो न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए परापत ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा

भोग कहो नानक एक बिन दूजा हवर न करने जोग तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखे छूटे हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन सांत सहज रहस्य मन उपजो सगले दुख पलाए रहाओ जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहुते छूटे पवजल जगत तरायन खोजत खोजत तत विचारो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किच निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी पापन को इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे ओए उहां ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाही प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास

बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित ऊख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो।

हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके गृह में आया। तोड़ी महला पंजवा कर चौथा, दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहं रोग ए तन से सगल दूर कीन। रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंत चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान। रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभु मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर। रहाओ दह दिस रव रया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विघ्न नाश, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी विमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सोखावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आनना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा।

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाय रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो, रहाओ पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही, रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मजे देल गो, माली के कर केल आछे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद आछे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कच नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता, जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा, हर रास्ते उधर मंजारा, सो ऐसा हर सेवो मेरे मन, हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसया मेरा हर हर, इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा के पाये हर जप, नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा, जप मन हर हर नाम हित जाए, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए। रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर्षों प्रीत लगाए, दिन हर प्रीत हो।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला मानड़िए मानड़ा काय।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हरतनी साला है सच सब ऊपर हरतनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ कौन पानी तरती आकाश कर मंदर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित नावे जित आए तंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

ला पंजवा कुछ दिन दूजा नहीं कोए तू कर कार करें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होनहार अगम आगाद ऊंच अपार जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गा है जो दिन सह सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जिन जपया किसको बलिहार किस पै संग तरह संसार करो नानक।

अतिरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे में दीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह निर्वाण खुदाए दिन सुरैन जे खुद अरागे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल या

आए मिले गुरु सुख आए मिले, तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ, हर ते गुण हर पाऊं दे से गुरु ते पाए, जिन गुरु का

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की पिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

किया से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गल लाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जाए पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर के त्या रंग रलिया माने सतगुर दाता आपिए उस करे पसाओ हों गुर विटों सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो कन गुरु सावास है हर देख नेहा हों वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुरु मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कह कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वलदाने हो सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहबो तू है मेरा मीरा तुद का है तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंग।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर गीतो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेव उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, दे खबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल कर दन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तेरा नाम खुंडकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। रहाओ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू दहिंद तू।

तार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ, कुजा आमद कुजा रखती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पति गजपति नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुर समायण होय निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन इति हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जमपै हौसला ही।

पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अतमलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी, एक द्वारे तो हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वर पाए सी, मत को जाने जाए अग्गे पाए सी, जे कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाम आप वर पाए सी, चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा के लोग सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल तार सी, सुही महला पहला। जोगी हो वे जोग वे पोगी हो वे खाए, तपिया हो वे तप करे तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदना सुनी जय पाई जे तो बह अलाए रहाओ, जैसा बीज है सो लुने जो खत्ते सो खाए, अग्गे पुछ न हो गई जैसा निशाने जाए, कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए, जो दम चित ना आवे सो दम दिखा जाए, ए तन वेची बैकरी जे को ले विकाए, नानक कम न आ

जोग ना सुनसा, जोग ना डंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाई है, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सब तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाई, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब दुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैया।

इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंग लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सड़ तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर दौड़ न होली पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्यारो निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाखे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नगर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरुमत नगर खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई, रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर

हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरुमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के सबद समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरुमुख रंग चलूला होई, मानुख मुगद

नानक हर रस हर रंग समावे तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अघाए गुरमुख पीवे सहज समाए हर रस जन चाको जे पाई कौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार हर रस राते रंग मुरार मनमुख हर रस चाख्या ना जाए हों मैं करे बहुती मिले सजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इपगाए। पतित जात उत्तम भया, चार वरन पे पग आए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक छीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम देओ लिया मुखलाए। जितने पगत हर सेवका, मुख अखर तीरथ तिन तिल कढ़ाए। जन नानक तिन को अंगदिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया। जिनको तुर लिखिया लिख लिलारा, तिनकी बकीली कोई क्या करे। जिनका अंग करे मेरा हर करतारा।

मैं होर काओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै खाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुझ पे आप सुनाई है, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की दिव जाने, बुरा पला तुझ सब किस सूझे, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत कराई, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे तेहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय,

जिन शिष्य साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिकै गुरमुख ब्रह्म विचारो। सुई महला चौथा कीता करना सर्व रजाई चित कीचै जे कर सकी है अपना कीता किछु न होवे ज्यो हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछु।

जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुर शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करियो जे कीता होवे। इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हौ आख ना साका, हौ मूरख मुगद नी चाण। जन नानक।

तल सल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाये, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। त्रैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनो करी जे जाना दूर। प्रभु अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे।

तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुरु परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विछाई सर्द अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा, तुम क्यों ही हो मिलन प्रवताई। खोज चरे देखो प्रह जाई, सुन सदेश रो प्रह गृह सेज बिछाई। परम परम आयो तो नजर न पाई, किन विद हीरो तीर निमानो। मिल सा जन हो तुझ कुर्बानो, रहाओ एक का सेज विछी तन कंता। तन सूती तिर सज्जा गंता, पियो मधुरो तन मतवंता। तन जागे जे तिर

हुए कृपाल प्रभ मिले सुभागे। पयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूँ मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह फिर है पाई, खोलो कपाट का मन ठहरा।

क्या सेव कमाओ, क्या कहरी जाओ, विद कित पाओ दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पाओ दान टीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को।

सेवा थोरी मांगन बहुता मेल न पावे कह तो पौता जो प्रेमाने तिनकी रीसा पूरे मूरत की हाथी सा रहाओ देख दिखावे सच ना समावे कह तो महली निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन नहीं प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभु जनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्ति जय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरुष सुवाई रहाओ दूजा सुई महला पंजवा बुरे काम को ऊट खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझे ना आना माया मोरंग लपटाना रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा सात जना का दर्श ना जीता कभू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिके नाद कर्म सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभु करी जय कर कृपा मोहि साथ संग दी जय तो किस पाये जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे गल में पान ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता नीर बिरोले खप खप मर

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पा मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निम

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा, उहा संत करें हर रंगा, चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा, दोहज कथा ए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सुही महला पंजवा, जाके दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजलता।

कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट रही अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरै दिन।

जाके सिमरन कच पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किच कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सिष्ट पौधे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, तू ही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तूही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए। दोही सराय खुनामी कहाए, जो तिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब।

गाओ, प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ, सो साहो सेव जित तोट ना आवे, खाप खर्चत सुख अनद विहावे, जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नान।

चरण कमल जाई बलिहारा, तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा। रहाओ सात संगत क्यों प्रीत बने आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर

साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद दे पाज दे।

परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सुई महला पंजवा, साथ संग तरे पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुरपूरे मिल पाप जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याये, पूरब लिप्त होए ता पाये, शरण पए जप दीन दयाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाव जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंगिन माते, बहा पकर प्रभ आपे काडे, जन जन्म के टूटे गांडे, उदर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा, संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया, गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी, कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में प्रवेशा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा, कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत।

करण कारण समरथ अपार रहाओ, सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तू ही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग पर

दया न पाए, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे।

की कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इह बड़पना माया लपताए पीसन पीस ओट कामरी सुखमन संतो खाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए उही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुत

की न्याय पद अभिमान करनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

ना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अन कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविद क्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविद रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

सतगुरु पास बेनम किया मिले नाम आधारा। सुखा सच्चा पाप था ओ पाप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओस तू सच्चा सिरजन।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निध, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद पियाई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते।

आहा निम सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ। कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

ओए राम नाम रंग राते जिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पर आते मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई भगता बने आई प्रभ।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पै निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान पान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंध फूंक से काट लिए तुम, आप पै कृपाला, सार समा

परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू साची देहे आनी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याय तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा, परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए, के साता कर चवर टुलावा, चरण तूर मुख

अच्छा ही सच्चे से पीराते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोवा, हर जन के पीसन

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुम रह द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुरु पूरा पाया सोही महला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

अमृत वचन हृदय और धारी तौ कृपा से संपाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझेवड़ अवर न कोई। जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक दान।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्यागो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंस मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया, चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाए साचे मन भाया, लाल लता मन मानिया गुरपूरा पाया, हो जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूरख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी हो विडा।

ज्यों आरण लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है। तू देखे थाप उथाप दर दीना आई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो दीवी अंधकोर कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर किस रू आई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दिपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम विसार एनस्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक नाम है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवे रजाए परम तौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना।

आपे रह समाए सो विस्माद कया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरुमुख वेख दूर।

बिन सदगुरु नाम ना जापे। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जापे। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाहीं आपे। गुरमुख हो वैता एको जाने हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूझे गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कार सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे दिखते संसारे। माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे होमे विच्चों जाए। आपे दाता कर्म है साचा साचा सब सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप साचे रंग राता गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा कृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सतसर नावन गुरमुख आप बुझाए। असर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिस दा सब किछ होवे जे विचों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अप सवालियो फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का सबद समाले, हर की भगत सदा।

काया अंदर संकिच वसे, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला, काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूझे

मूर्छित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुरु विचारा। गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम भुलाई। जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई। काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्ण महेशा सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा। पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा। सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी। बिन नामे दर टोई नाही ता जम करे कुआरी। नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी। लोका ना साला है जो मर खाक थी। वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुसरा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन। जमकुर बद्दे मारिये वेला ना लहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन। आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन। तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन। आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन। निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन। मोह पाले ते निंदका नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवे तैसा होवे ते ही कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवे किते पर खाए। ओए अमृत परे पर पूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे ओ

सच्चा आसनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेले सो प्रभ सदा समाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए सो सो सच्चा विसरे त्रिग जीवन संसार नदर करे ना विसरे गुरमति विचार सतगुरु मेले ता मिल रहा साथ रखा उधार मिले।

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर विसनी कोर आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास हच बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े न टिकन ओना सच न पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पै किरत कमावना कोई न मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है विच्चों ठाक राए गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए तन मन

एक सो लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संचिए।

जो तू सेव है सो तू है होवे, तू सेव पैज रखाई, भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई, जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए, सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाए, एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई, गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई, पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई, सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई, अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई, रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई, नानक का प्रभपूर रहो है, जत कत तत् गुसाई, राग सोही महला चौथा, अष्टपदियां।

के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याज कै वस्तर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियान उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रमन गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रब एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनग्रह अपना प्रब कीना, केवल नाम भगत रस दीना। आद मद अंत प्रब सोई, नानक किस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड कमावे तंग जियो। नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो। मन से कमो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आवन जाना रह गए, मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत ना पाई है, ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुई महला पंजवा, अष्टपदियां कार दसवां, काफी

से वाडियां हौ ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरु महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहु मानिया जा तू अंदर तासु से तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान।

तोहो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाए मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भर्म ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुचज जी, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंज कुचज जी अमावन दोसड़े, हौ क्यों सो रावण जाओ जियो। इक दू इक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सखी सोहरावया से अंबी छावड़ी है जियो। से गुण मंज न आमनी हौ कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो। इकत तोल नाम बड़ा हौ सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो। से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो। सुही महला पहला सुचज जी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाने तख्त वडाइया पाने पीप उदास जियो। पाने थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाने पवजल लंगी है पाने मंज परियास जियो। पाने सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो। पाने सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो। सुही महला पंजवा गुणवंती, जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निवला गो पाए जियो। आखा बिरथा जी की
गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाव जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाव जियो। हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाव जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाव जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव

उगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तन रडे पा बिन फिर तन कुमलाणी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे किसकी बलराम जियो रव रहा जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक में वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रग करे बलराम जियो। कृपया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना नरहने केवल रव रहा त्यो लोई। माया निराशी रोए विचुन्नी बाली बाले हेते नानक साथ सब सुख मैली गुरचरणी प्रवचे थे। बाबुल दुखड़ी दूर ना आवे कर कही है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी।

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमत पंथ समाए। राग सुही महला पहला, संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया स्थाई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया हम दिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजन आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही।

माँ का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्त पासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वे हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे है।

बाणी सच्ची भगत करे दिन राती गुरमुख आस लखाणी। भगतां की चाल सच्ची अप निर्मल नाम सच्चा मन भाया। नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया। हर भगतां की जात सत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करे विचो आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम। गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी। अम जिन भगत करे दिन राती कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कह दर साचे अम जिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई दूजे पाए परज भी गोई विन गुर तत न जानिया भगत भी होना सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई भगता कह कर कार साचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना पे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम खुटे हर दिया सह सुवाया हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे गुर कै सबद सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोगा पाया सुही महला तीजा सबद सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हों मैं सब किल्म काटे साथ रखिया उधारे राम सत रखिया उधारे दुत्तर तारे फिर फल जल करण न होई सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी जिन सच बिठा लिया सोई साचे गुण गावे सच कमावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुरु साथ बुझाया पत राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए हम दिन सच प्यायन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे।

जो बोले जो सच करे सो होई, जय देखा तै सच पसरिया और ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे, मर जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता।

सच्चा सुख सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

हम हर शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजन पंक्त करे गुर आगे साथन कंत प्यारी गुर का शब्द वस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे निवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसा।

नाम के रंग रवे रंग राती जिन हर से की चितलाया कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरमति मन निर्मल हुआ।

पाया कर्म विदाता। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर वस्या मन मुरारे, नानक मेल लई गुर अपने, गुर कै सब सवारे। सूही महला तीजा, सोहिलड़ा हर राम नाम, गुर सबदी विचारे राम, हर मन तनो गुरु।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुभाए राम मिल सब सुभाए आप गवाए रंग सोरलिया माने शेष खाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जो चले सतगुरु भाए।

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन कके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ करे न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर सीजनी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुंगाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक पाग जियो।

गुरमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विदासी जन नानक बोले चौथी लावे।

संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परंपागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

चल चल परमिया, मन मुख परम कुलाया, नित आसा मन चितवे, मन कृष्णा पुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक ना

चौथा मारे हसवे जन हो मैं बिछिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे बनिया इन हो मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब काल था इन मन मुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हो मैं छुटिया वस आण होवे जन इस मन को मन बासे जो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया जन नानक प्रभ देहो मती छड़ आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ सेजड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा लिहो मिलाई मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सेज बिछाई जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजिया मिलिया सह सुभाई इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया गुरदसे हर मेले मैं मन तन प्रेम बैराग है।

पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस के त्या गुरपुरा, नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया, बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, सुख दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए, हर हर दुख नासे,

जड़दाना कर मेरा मत साई कृपा की जय सौ मत दी जय हाथ पैर तुत्याई गर्भ ना की जय रेण होवी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अट गहर गंभीरा तुम फिर हम दोहरिया राम तुम बड़े बड़े बड ऊंचे हो इतनीक लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आसन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे ठाकुर भाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माना नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माना हौगारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यो मन माना प्रभ जी पानी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला सूरी महला पंजवा साजन पोत सतगुरु मेरा पूरा तिस दिन अगर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूड़ी नित नापे राम हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संताप है नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम से आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जन पंख सा दे दुख न व्यापे कोई जल खल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा
नानक को प्रभु कृपा की जय। नेत्र देखें दर्श तेरा, कोट करन दीजे प्रभु प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहत्याना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा की जय, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे, चरण चले प्रभु मार्ग राम। पर सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार ग्राम। पर जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग। कहो नानक प्रभु कृपा की जय, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम। एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणे मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभु की शरणे, करण पारम गोपाला। सब किस तेरा तू प्रभु मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभु कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सुही महला पंजवा, हर जपे हर मंदर साजिया। संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा, अचल नींव रखाई। जन नानक प्रभ कहे दयाला, सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे, पार ब्रह्म मन उठा राम। गुरुमुखे सच करने सारी, बिन से प्रम पहच उठा राम। अनहद बाणी गुरुमुख बखानी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बने आए, जो प्रभ अपना करया। कर में नवनिद परे पंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभु कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभु छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम। दुख पाप का डेरा काठा, कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच कर्म पुन फलिया। सो प्रभ अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल में यल सोई। जन नानक प्रभ की शरण आई, तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभ पर से हर लाया राम। मेरा मन सोया नीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वादाया। करी नदर स्वामी सुखेंगामी, हल्क पल सवारिया। बिनवंत नानक नित

मिल सतगुर पार लंगाए राम। गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना, जो किछ करे सोई फल मानो तामन सह समाना। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए, हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम, आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई, अनग दिनो सिमरो प्रव साचा विछड़ कभू ना जाई। सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने, कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने। अनग दिनोद पे मिट सकिए मंगल सदा हमारे राम, आप नरे प्रभ आप सिगारी सोबावंती नारे राम। सह सुहाए पे कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया, कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे, कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम, सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन किस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए। संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुर पूरे नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतिपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद तुनकारे पत बिचारे संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मैल सब काटे किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना बहु न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साधे छुनिए। सुही महला पंजवा संता के कारज आख खलोया हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे, पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध रिद दीने करते तोट ना आवे काई राम, खात खर्चक बिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाथे दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई,
नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य इतनी ही किया मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया काल के रात इसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन क्रिया महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो। गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तने अमृत पी जय। बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा। कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना सितारे। पतित पावन हर बिर सदाए एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवल अवर न कोई। आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हर निमक ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो। गुर सतगुर कह

बार राग दोष से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूहै वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले कतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप पायन कर चोज विदान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

सूहा वे छड़ तू तातिर लगी प्यार, सूहे वे स्थिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार, सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार, मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार, सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार, नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार, महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार, मुंद सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार, पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किस साथ न लिता, सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता, श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन, महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संवालन, महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए, नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए, पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नावे जेवड होर दात नाही किस रूप ना रिखिया, नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया, सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया, श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करें विकार, चलन सार न जानी काज सवारन हार, महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए, नानक नाल न चली फिर पछतावा होए, महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार, महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले, तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे, पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सृष्ट उपायन आपे फुनगोई, जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई, श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया, महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता,

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया को बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार कबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तो नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार से जय कंत न आयो।

भगत ना हो गई, नाम ना लगे प्यार, सतगुरु मिले पौ उपजे, पै पाए रंग सवार, तन मन रत्ता रंग सिउ, होमे तिसना मार, ममता निर्मल अख सोहना, तेतिया कृष्ण मुरार, पौ पाओ सब तिसदा, सो सच वरते संसार, श्लोक महला पहला, वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह, आप खड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो, गुरुमुख सेवा थाए पवे उन मन तत् कमाहो, मस्तक लहो मजूरिया मन मन खसम धराहो, नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह, महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न, तिन जर वैरी नानका जे बुबे थिए मरन, पौड़ी हर साला ही सदा सदा, तन मन सौंप शरीर, गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर, मन तन हृदय रव रया हर हीरा हीर, जन्म मरण का दुग गया फिर पवे न फिर, नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर, श्लोक महला पहला, नानक इहपन जाल जिन जले नाम विसारिया, पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े कित निबंधे ताल, महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवही, किती लास हम जा बसे ता तका नहीं, पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान, सदा ने चल रव रया सो कृप सुजान, गुर प्रसादी सेवी है सच सगद निशान, पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान, अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान, श्लोक महला पहला, नानक बदरा मालका।

सिफती सार ना जाननी, सदा बसे शैतान। गधो चंदन खौलिए पी साहू स्यों पान, नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान। कूड़ा कच्चर कछिए कूड़ा पैनन मान, महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान। एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान, नानक जिन्नी सुन के मन्या हौ तिना विटो कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हौ मैं झगड़ा पायन झगड़े जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकायन इको रब रहा, सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया, श्लोक महला पहला। सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दा तार, हौ मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार। लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार, एनस नव तन निर्मला मैला कबहू न होए। नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए, मैला पहला। इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया, मैला पहला। सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित, मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित, मैला पहला। हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात, सब राती सोहागनी इक मैं दुहागन रात। कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर, गुरमुख ले हो मिलाए जन पावे नाम हर। अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत पर, हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर। जग में वर्ते आप हर सेती प्रीत कर, श्लोक महला पहला। जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ, सुन्ये कर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाओ। महला पहला। सो उलामे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। फिट इवे आजीविया जित खाए वदाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। पौड़ी ताड़ी गुण गावे नित जन्म सवारिया, गुरमुख सेव सदा है चावल भारिया। कर दर पावे महल नाम प्यारिया, गुरमुख पाया नाम हों गुर को वारिया। तू आप सवार आप सिरजन हारिया, श्लोक महला पहला। दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर ना जापे चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख उतरस पार। महला पहला। शब्द साध ना आयो नाम ना लगो प्यार, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। नानक पया किरत कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी जे प्रभ साला है अपना सो सो बा पाए, सौ मैं विच्चों दूर कर सच मन वसाए। सच बाणी गुण उतरे सच्चा सुख पाए, मेल पया चिरी विछुनिया गुरपुरख मिलाए। मन मैला इव शुद्ध है हर नाम त्याय, श्लोक महला पहला। काया कुमल फुल गुण नानक गुप्त माल, एनी फुली रो करे अवर के चुनिए डाल। महला दूजा नानक तिना बसंत है, जिन कर वस्या कंत। जिनके कंत दिशा पूरी से एनस फिरे जलंत। कौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी, अंगदिन सेवी गुण गवा मन सच्चे रचनी। प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी, सतगुर चरणी लगिया हर नाम नित जपनी। जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी, श्लोक महला पहला। पहल बसंत है आगमन पहला मौल्यो सोए, जित मौल्य है सब मौल्य है तिसे न मौल्यो कोए। महला दूजा पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे, दूजी कहरे लगिया फिर जोनी पावे। नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे, गुर के सब सलाइए।

क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुखता सहरावे हो दुख भी संभालोए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको ओंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न ना कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख कर

सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए पर गए बग बैठे आए रहाओ काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माँ ने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहाँ गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगह का आया रहाओ करो अरदास गाव किस बाकी लेओ निबेर आज की राती किस भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया पया कराया कहो कबीर तेरी नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक सुमाया।

जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाऊ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हों लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नु सवतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने अज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे नांतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे। सो खत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दोए पखीनी जिन नहा निरंतर पगत ना कीनी पुर सलात का कंठ दुहेला संग न साथी गमन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है।

तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट की तरहार चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यह पन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको अंकार सतगुर प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

कह साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन को ही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा सा मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी में पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कह फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चल सी डुमना।

मन बेदया दयाल से ती मेरी माए, कौन जाने पीर पर आए, हम ना ही चिंत पर आए रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलख अधेओ रहाओ। माया मोह तरक तीनार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप चूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंध्यार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात न होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम खुले गौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली, सास दिरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली।

आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए। जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए। आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते। आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या कोता है बहाना। ऐसा एक तेरा खेल बनया है सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए। अंदिन लागे सहत्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निधाना। जो आप चलाए तिने कोई चाल है जो हर पावे पगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा। इक ना कर मैं देवले आई इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे देखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने किस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चहु जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना। जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में की रथार नाम। जुग जुग आपो अपना कर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी त्याया हर हर

मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए इस पर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हो तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुवाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान मेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। होमे माया शब्द जलाई दर्शा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसार वेख है बहु न मरे न जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहत्यान हम जिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई। जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का शब्द तक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहा माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ तोवे तोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो जनमानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगत अज्ञान मती शरणागत पुरुष अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नामे रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुबत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत न होची मत मदन जिन हर हर सेव न करा। ते नर पाघीन दोचारी
कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम दोहे थे कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाहत दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरतो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार दम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना पला सब कोई बाँच है, सो करे जे मेरा चित नाच तैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे त्यों बुलैनी। बिलावल महला चौथा, अनद मूल ते आयो पुरखोत्तम, अन दिन अनद अनंदे। धर्म राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिरें फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिरस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक किस पगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देखर कहला, ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे किस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ परम चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड माया सर्व पुयंगा, हम में पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ हुए कृपाल तो गुरु मिलावे, हम फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर किसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया किस आया फाग, जो गूंगा मन में विस्माद, अनग रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, तरत पुनीत कई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए, रहाओ सबनी थानी रवे आप, आज जुगा जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थानी उठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन सन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा

मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर स्याण पा बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम अरादे नाम वखाने, हर नाम ही मनवाता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिना वासो। अमृत नाम आराधिय निर्मल, मने होए प्रगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जम की काने। तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, दिन से पाप नेरे। पशु प्रेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। नानक बास तेरी शरण आई, सदा सदा बलिहारे। बिलावल मैला पंजवा, दिखे बन फीका त्याग रि सकिए। नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होत जियो, मान महक ना सकती पाई। सादा दासी कियो, नानक से दशोभा बनते, जो प्रभ अपने कियो। हर चंदोरी चित क्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस ओगण अतरूप रस माते, इन संग सुख न पाया। तन तन हर साधन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वड पागणी सखिए, संता संग समाये। कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे, चरण कमल लिव लाये। कहे जन्म ना मरण ना आन जाना, निचल सरणी पाये। प्रेम बिचो ना मोह व्यापे, नानक हर एक ते आये। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतले सह सुहाए। से सुहावी संग मिल प्रीतम, अर्ग मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छु जाए। नानक अचरज अचरज सो मिलिया, कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा। इक को उतार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा। आपे बनज आप व्यवहारा, ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए। जप जप जाइए तप दिश पाए। रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा, आपे जल आप ही तरंगा। आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा। आपे जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सुधरना। आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना। आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना। आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना। आपे अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरु वड़ पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे।

बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आपन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँह पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो।

साथ संग किस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नेम संतो के प्रभु दर्शन पाया, कहो नाम सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभु सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा भूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा।

ना रहाओ। अंधकूप से पर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पै परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता। चरण कमल सो लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत। जल न बुझे हर हर गुण गावत रहाओ। सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहाओ। भगत वचल पै का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ। एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान सब तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या। पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया। महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया कटल विसरिया। वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय। सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी। अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे,

पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम रंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा शक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपट फाक दले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

इस अभय दान दीपा सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता श्रम करते दम आज को ते गणित नेता कमन बढ़ाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोय नाम देहो नानक दर श्रीता। बिलावल महला पंजवा अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध लपट कपट गृह विद्या मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कातर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से तेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे पगे जब सात संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया सात संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दुखना एखिन में जारी दया मया अब निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ जगत सुधारन साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल।

जीवन सुख सब साथ संग ब्रह्म सापूर जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किछ तुम ते मांगना।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ तहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी ए हे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा।

आप रखें, आप देवशी आपके प्रति पा रहे हैं। दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है, करनहार जो कर रहा साई वडियाई, गुरपुर है उपदेशिया सुख समर जाय। चिंत अंदेशा गणत ताज, जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते पई शांत पर सत पा।

जिन प्यो तक होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिला अब आए, बस संग हर साध कै पूरन आशा।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे बड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सुलभ क्रम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुर पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

कमल सो रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न बिसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, सित पाई आनंद।

रहाओ। सोवत हर जप जा गया तोथे अब समाद की अमृत तृप्ता स्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर पगता का

तरपचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सबल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको कहो नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पत्रिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुट है, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमर नाही, जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा खेद दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना प्रभु जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया, कुन सुख में पाया। सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया, जीवतिया अथवा मोया।

योग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सहयोग नानक प्रव शरणागति करण कारण जोग। राग बिलावल महला पंजवा दुख दे कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। और उपाव सब त्याग गया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ। बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा कर कर मस्तक थापया नाम

रहाओ। शरण परे चरणारविंद जन प्रभु के प्राण सहज सुभाय नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभु आप प्रभु शरणागत जन परे ताका सब प्रताप। राशन हार अपार प्रभु ताकी निर्मल सेव राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ। सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभु आराधी है मिल साथ समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे। राम नाम जो जम जपे हम दिन सब जागे पंख मंत नह जोई सिर चाख न लागे। रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग आनंद मगन रस

नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाथा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साथ संग ताते बहुर ना पाओ बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद तुन इस बनियो स्वाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न भय बांचत फल पाओ बिलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास चरण कमल का आसरा प्रपुर गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग सास रहाओ मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बिलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपनी हास रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राध्या होए कृपाल, मार्ग संत बता।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नाम प्रभ शरणागति जाता वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, सात जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दिया एका।

उगमताल जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हे मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेत नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग।

नानक की बेनंती प्रत है सात संग रंग तार बिलावल महला पंजवा। संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिन अर रात रहा कर कृपा अपने प्रभ की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तंभ से जात। त्रिपत अधाय तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिनसे कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो। कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महा

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आवत है, जासु राच माच कुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंगर साज सवारियो, पावक तने जरावत है, ऐसे गर में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर खाडे, केस दहे से रावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यो पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग मौ

पांते हुए सगल खरी। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इल मंत लई, कहु नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहे सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, पंज बंद हर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी। देखियो मोहन सब कै संगे, पूर्ण न काहू सगल परी। पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यों कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानकारा खा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पई स्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाऊं दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुर पूरे का जपया जाप। कहां करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख

पहला पंजवा सदा सदा जति है प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख न व्यापे है, आके दर्द है पूरन काम रहा, आपके आग परिय हित करनी, गुरते पालिय हो निधान, जन्म मरण की कटिय फांसी, साथी दर्द का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर उपकार नित, कुछ रसना का मोल किछ नाही। रहाओ कुल समूह उदरे खिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही। संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कै संगा। रहाओ खिल में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच तो कहे रा जंगा। कभू न बिसरहिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्थ रखो हर आगे। सर्व जिला का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल। कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न काची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल। नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए। जम दूतन को त्रास कहे, रहाओ जेते पुनः चरण से कीने। मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा। जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है। तुह पदार्थ बड काज नहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते। निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ भी न पहुँचे। सुलही होए मुआ ना पात। रहाओ काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक। मंदा चितवत

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नान शरणाई राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल महला पंजवा। पाप पाप ते राखे आप, शीतल पै गुर चरनी लागे, राम नाम हृदय में जाप रहो, कर कृपा हस्त प्रभ जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे विसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट गोचर, जीते संग बसे।

कसरत पाला आज पैर तेरा नाम जन जाते नान प्रीत लाई प्रभाते बिलावल महला पंजवा पन पन जोबन चलत गया राम नाम का पजन ना कीनो करत विकार निष्कोर पया रहाओ अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया।

तो शब्द मेरे ही रह बात है। हर नामा मन संग करो, तस्कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो, जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर करो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे।

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल मैला पंजवा दुख दे करनावा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आपे मेरे।

अनुक भगत अनुक जन तारे सुमरह अनुक मुनि अंगले टिक निरतन तन पायो प्रभु नानक अनुक।

उलझियो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे ये कह हर लाहे अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस कूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मेला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पहचानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जान।

है। तू नर जन्म अकाल खोया, यह राखो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जा को।

सब कोई कत कत बात करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहे साचा मन सोई मनमुख कथनी है।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंडाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर मैल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

अष्टदियां कार्यारवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आप ते आप खाए हो में ते अम दिन हर रस गीत गवैया, गुरुमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, छिन पल रह न सकूं बिन नाम।

गुर के शब्द पकड़ बंद पहिया। हर हर नाम पोत बड़े का खेवत शब्द गुर पार लंगैया। जम जागाती नेड़

रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोह व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लैया एक दृष्ट सब समकर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे।

को मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

पिन पिन टह पैया, हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया, जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा, सतगुर परचय मन मुंद्रा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़ैया, अमर पिंड पै साधु संग, जन्म मरण दो मिट गैया, मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मधुसूदन माधो, मैं खिन खिन साधु चरण पथैया। रहाओ तजै ग्रस्त पया।

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

औ जात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

भैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभु केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस वितों बल बल कुम गैया।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख पर मैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आए मिले छिन टील न पैया कर कर क्रिया चार विधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया।

नी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम पूखे मोह प्यासे इक रस चाखे सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर सा

गुरमत मेले भगत दृढ़ाए। षष्ठी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पट पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सप्त संतोख शरीर, सात समुंद परे निर्मल नीर।

दादर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

गवाया। नानक नाम रखो उधार, देवन हारे को जयकार। वीर वार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुबाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक राव, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखे, कोई न मिटे तेरे लेखे, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर

किसनो मार न सा कह कोए, जिसदा साहिब डाडा होए किसनो मार न सा कह कोए, साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे दे वड्याई, किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए, गुरमति सांत वसै शरीर।

मेरा प्रभ अदरया परपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एक को वर्त अवर न कोए, मन रोष की जय जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, किसी वार सब सब सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, किसी वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चल सदा सच समाए, कितनी बार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काचे, मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करे पेख तारी, पाव पाव पर मैं काची सारी, कैसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच मैल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक ही वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहया समाए।

मुंड नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब पिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगतूती, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। मिलावल मैला पहला मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रब अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोचिए, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर कूटड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार बीजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीज डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं पान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाई है हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे खा लिया नानक हर लिवलाग संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम गुरपुरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मुर्द मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु का वास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाया।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर

निर संख्याय प्रवत्याय बने अचरज जांगिया मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांगिया मिल ज्योति ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंश नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन श्रेय उमा तै रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत सगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिन वंश नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर गय पूजा गही कट जम की साथी राम गय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंश नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सगल जा को करना पत गतिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंगारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर सांप दयाल प्रभु सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभु चेते है नानक सुखी हो त्यो जियो। संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गई दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल नह सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा कृम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत नह डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम। इक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछी ना राम, बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम, नानक

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर से जो नी पाए, गुरुमुख जन्म सफल है जिसनो आपसे ले।

जे वस्त मंगिए साई पाइए जे नाम चितलाइए गुहज दल जीव की चीके सब गुरु पास ता सर्व सुख पाइए गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख ले जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए सच से आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैज पथरिया गुर कैसे सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाए जा को नदर करे मानस ते देव ते पे सच्ची पदक जिस दे हों में मार मिलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा त्रिज ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए नाम रते जन सदा सुख पाए जन नानक किन मरे।

ते हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्याई पूरियारा के मोख किए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग पुत गुर पाई है जे हर प्रभु बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल शांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए बड़े आए होए महला तीजा ते मन गुर की सुख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान नानक

किए। जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुर के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुर अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो। जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर। हर आप रख लिए श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। महला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसार धूप व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार नाम न चेते, शब्द न विचारे, तो मनमुख का विचार।

हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर हट ना वत ना वेसाओ। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ। हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ। जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा। इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया। गुर प्रसादी नाम मन वसिया, अंगिन नाम के आया। दिखिया माए उदास है हो में शब्द जलाया। आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया। सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण पुल्ले, हो में मोह वधाया। पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया।

बिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत खोन सगवादी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके। होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में एलाती जा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचों जाए। जो किस होए सो सहजे होए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका

अंगन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंगन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अतै कोई क्यों देवाए। इहो हर तन जोर कीतै किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कै सीव बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

ना ए मारी ना मरे ना ए हट विकाए गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर

नानक जो पावै सो होए पौड़ी। पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरै मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया। नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन। हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचै रचन। दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन। नानक साकत नरक में जम बजे।

किस सास गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सकै तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौं सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

गुरमुख नाम गोविंद अंजन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मंतन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मीह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए।

दे तू दे रे चलो तुम नतर को तक्का गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबू जम ले जई है रे मांस बपरा मूसा कीनो मीस बिलैया खई है रे तनमंता अर मिल तन मन ही पाकी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना करो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहाओ आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात सुना तजिए न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरे बिलावल को हर समान नहीं राजा ए तूपत सब दिवचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम चूको रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील तरम जब पगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संखी ए काया ए लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साज नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ दिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनिय सुदस तुम्हार मांगो काए रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा।

सफल जन्म मोको गुर कीना। दुख विसार

दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध करतले सब कृपा तुम्हारी।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे कुरैन पात रहे जल समीप।

दे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर तय प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किसकी आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाई रहा। जो दिसे माया मोह कुटम सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करें ए बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब चढ़ाई। जो कुछ आस अवर

दिन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याई है, जो खुन में किलिक सब करे बिनाशा, ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह ना।

वह बहुत कदाचा अपनी दृष्टा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी दृष्टा अवरा पे कहिए अवरा पे कह मन लाज मरासा।

तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुम उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सच देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जाने सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना इस जन की वडे आई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हर अविनाशी सदा चिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

करिए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित करई है हर दिन को मार जीवाल न साके ता मेरे मन कायत करई है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब

हर सलाते आए तू तुद लय छड़ैया गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर तब जाने।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांख।

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा। आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भाए ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझित ओड

तू लाग परे ओ कुटुंब आयले। ज्यों पंखी एकत्र होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले। जैसे मीन रसन साध दिन से।

ओ कृपाल दीन दुख पंजन सब तुमरे जीजन पाए ले पावो दान सदा दर्श देखा मिल नानक दास दसाए ले रागौण महला पंजवा चौक दे कर दूजा।

नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात, नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो गीता, नामे दरगे मुख

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमाने को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राव जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण दियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जा का अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पगत पहे लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौनस है जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार।

आनंद हरनाय गौण महला पंजवा। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाए पाई। गौण महला पंजवा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता कावन लाग। गौण महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ। गुर

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

तारे सबसे ऊंच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले साकत पत कोवे साध जना पद मल मल तोवे पंच फूट जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ त्यों लागी सह समाद सांसनंतर एको स्वामी सगल कटा का

पगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इतंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को यह सुहाओ, तज अभिमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर सो मन रंग, जिन तू किया तिसको जान, आगे दर्जे पावे मान, मन तन निर्मल हुए।

ओहो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौण महला पंजवा। धूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पय वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूरन वत्संग। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए। कर्म तर्म इह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर पर गोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण। राख लिए अपनी कृपा तार पंचदूत पागे विकराल। जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा। कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव। प्रभ कृपा

सर कोई नाही, काट काट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचत पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत।

तो पोए ना सके जमकाल, जग में आया सो परवान, गुरुमुख अपना खत्म पछान, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उनमें।

काशवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंत मां विचार पंच दूते मंत सौ शरणाई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ।

सिदारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै एक काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभात संत कै संग बसे दिन रात।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत, गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नाम

रामायण दत्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौन मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध।

पार अपने दास रखे कृपा पार। नानक के प्रभ प्राण आधार गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसै ना एहो जाए आज जुगादि रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोग सब किस इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं इस माया एहो अपरंपर होता आया पाप पुण्य का इस लेप न लागे कट कट अंतर सब ही जागे। तीन गुणा एक शक्ति उपाया महा माया ताकी है छाया अचल अछेद अपेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ताकी गत मित कछु न पाए नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहारे जाओ संतन के संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किल विच सब गए संत शरण वड पागी पए राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल साधु जन की करे रवाल काम क्रोध स्तंते जाए राम रतन वसे मन आए सफल जन्म ताका परवान पार ब्रह्म निकट कर जान पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे जन्म जन्म का सोया जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रहो सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर। राग गौंड अष्टपदिया मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूरत सफल जा की सेव अंतरजामी पुरख विदाता आठ पैर नाम रंग राता गुरु गोविंद गुर।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया

कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुरु बलिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर कामना आवे।

कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। गौंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कट बिन से गगन न जाए ले, मोहि बैरा

लेकिन जियो दीन रे। हर में तन है, तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे।

कालो साट हथ ना तोड़े तरे ध्यान वहां कैर दे बठे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोत कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना सीख मंगासी। ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे मुंडिया अंदिन तापे जाहे। इक दोए मंदर इक दोए बाट हमको साथर उनको खाट। मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश

सार शंख को बिक बिकसे संसार कर सीगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिस का

सुंदरी पग मेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तऊ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर ये कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जम से छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख से होए अनाद, जपिए नाम अन कैसाद रहाओ। जपिए नाम जपिए अन, अम्बे के संग नी कावन।

जग में बक्ते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी, अन्न बिना न हो सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल, कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या, राग गौण बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार, सतगुर प्रसाद, असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने, तो न पुजे हर कीर्तनामा, अपने रामे पजरे मन आलसिया, रहाओ गया पिंड परता, बनारस अकबस्ता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता, सेवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं, सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं, गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए, ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो, रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा, जो बिखई हेरे

हर हर करत पूतना तरी बाल कातनी कपते परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सुला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया प्रणवे नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तनमय नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंडे आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा रामचंद्र।

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक नी

अपना बिगार बिराना सांड है करे निंद बहुजो निहांड है निंदा का करो संसारा निंदक का परगत पहारा निंदक सोद साध बिचारिया करो रविदास पापी नरक सुधारिया जोड़

आना, अभी कभी किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी, पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक।

कहे नर हरि जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जा पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेरे आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिग सागर तरिये।

आप करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवतियां क्यों मरिए, रहाओ दूजा।

बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे। सुध साधक अर्जोगी जंगम तीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे। कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे

का नानक बोले, वसगत पंच करे न डोले, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरह सगले कुल पारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, ऐनस सुन समाध समावे, रहाओ, तिथिया पाए पगत पे चले, हो वैसो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए तनवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए। जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए। राम कली मेला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आए गुर पार तारण हारिया।

आया पर सत्कार से जते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा। राम कली मैला पहला सुरती सुर कर लाइए एक। तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख। तन दीवा बल

जंग जाओ पांडे पाओ पवे तुझ आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सह किया गल्ला दर किया बा

दिया देह तारी, राम कला निभे पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंद जपे निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख भगत करो सब प्राणी, हृदय परदास होवे लिव लागे। गुरमुख हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर कार तली दिखलाया। पाग हीन मन मुख नहीं लिया, तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा, हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल, सत्संगत मिल बुद पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता।

रहाओ। जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए, दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए, जो जो राम कहे जन ऊंचे नर निंदक दंश लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए, हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध सही प्रभु पाए कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा मिल संत जना मुख पावे। राव हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदरी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी रिद मन तन प्रीत लगावे, बिन प्रीति करे बहु बाता कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां तिल न लाईए, हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित न लाईए। राम मोको हर जन कारे लाईए, हौ पानी पखा पीसो संत आ गए, पग मल मल तूर मुख लाईए। रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊंचे जो सतगुर मेल मिलाईए, सतगुर जेवड अवर न कोई मिल सतगुर पुरख त्याईए। सतगुर शरण परे तिन पाया ले ठाकुर लाज रखाईए, इस अपने स्वाये आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाध लगाईए। बगुला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाईए, नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराईए। राम करी महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जपाया। नाम हीन फिरे से नकते तिन कस कस नक वडाया, मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। राम करी महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उधारे, जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे। रहाओ कोट कोट ते किस त्यावे तांका अंत न पावे पारे, हृदय काम कामनी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वडा वडेरा गुरमुख रखो उरदारे, जे वड पाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट विकट हर जन है हर रास है कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर प्रत पारे। राग राम

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई।

तो दर्जे सुख पाओ संतो ऐसी कथो कहानी। सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी। रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुर मिलो नवे निड पावो इन विद तत्व बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो।

सहज मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतरी सगल बेगनी, ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी, रहाओ सुर्ग पवित्रा, मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जत कत देखो हर गुनी, मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह अकार नहीं मेदनी, सतगुर जोग का ता निवासा, जय अवगत नाथ अगम तनी, तन मन हर का, तन सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी, राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी, साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण, सतगुर के खजाने, अचरज किस तैन न जाई, बस

सर मेरा अंतराज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा जे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत्सार परम पद पाया छोड़ न कतु जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

पुरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

कोई ओढ़ नील, कोई सुफेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाँछे तुस्त, कोई सुर जिंदू, कहो नानक जिनू।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम।

पाए खिंचया सूत आई खाए जो मैं एक मत हूँ किया तै बिखरे थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे सुन जोगी कै मन मीठी लागे रहाओ दूजा राम कली मैला पंजवा पागा करके ला।

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, त्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, पौसोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले बीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लक बेरा, तन मन जियो पिंड देसा जिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल तिवारा मेल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मैं मां जा की गहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

प्रीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई कर पार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन दे अंक में माता की केतक बरन बल बल जाये ताके चरण तिन्ही किया जब तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल में परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पे परगा।

आमी संत जनी परगास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलत मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल बिरधानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

नीचल आसन बेसुमार दुगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे परम पे मोह न माया जाल सुन समाद प्रभु के पाल ताका अंत न पारावार आपे गुप्त।

कर कर थाके वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान।

तिस संग रहो इरा नाराच। प्रत पारे नित सार समारे, अंत की बार ऊठ सिधारे। नाम बिना सब चूठ परानी, गोविंद पदन बिन अवर संग राते। ते सब माया मूठ।

जीवा जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते चूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रो

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा, बिन हर पग

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपूरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक।

परमेश्वर स्वामी काटकोट दाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि जही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरु का जप मंत्र निर्मल रहाओ एक की

बूढ़त लो साध संग तर नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुर इहो दीनो मंत मिटे सगल पै त्रास पूरन होई आस सफल सेवा गुरुदेवा कीमत किछ कह न जाई साच सच अलख।

बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया अनंत।

साध संग दुख जाय रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

के बैसंतर पा गए, माटी को जल बैदिस त्याग, ऊपर चरण तले आकाश, काट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को भिखियन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

मुक्त प्राण जप हर कीर्तारथ वाचे वादना वेद विचार है आप डूबे क्यों कितरा तार है कट कट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुरु मिले ता सोजी होए गणत गणिए सहसा दुख जी।

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सोग मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हठ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पग पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

जोगी सह सब सह मया आद पुरख अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए को रो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभु लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत

एहु मन राजा पंच वसे विचारी सब द्रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

देख करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह है हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड अवधु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे अवधु जत सत शब्द विचारी शब्द

भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरुमुख देव ड्याई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध उच्चों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई।

नाम नवंग निद पाए, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चित अदुष्ट लगाए।

बुझाई नानक एक कहे बेनंती नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाए संतो गुरुमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहा हर दिन सब कुछ मेला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाने संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु सबदी खाए पाए पूजा करें पर दुध नहीं जाने दूधे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाना मन वसाए पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाने संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाने।

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपे आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी निर शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया कट अंतर।

एक पेख करे फिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अंदिन पगत करे दिन राती राम नाम उर्धारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन पगत न हुई कभी सह पाए पगत सवारी माया मोह शब्द जलाया।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंग दिन जागत रहे दिन रात।

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अनपज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्याई, किन्हि कया बा बहु पाई, कोई कहे मैं तने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हि कुंगर नृत्य कराई, किन्हु वर्त ने माला पाई, किन्हि तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्हि सिद्ध बहु चेतक लाए, किन्हि पेट बहु ठाट बनाए, किन्हि तंत मंत बहु केवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया। रामकली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार जना।

इस सेवत मन आलस करे जिस विसरे इस निमख ना सरे हम अपराधी निर्गुनिया रे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वड पागी मिलिया नानक दास संग पातर करया राम कली मेला पंजवा काहू बिहावे।

ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यो सुखान तंत, तन बिज सह गृह आवतंत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब देखते हैं प्रभ सगल तुम्हारी।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कहे नानक मन मेरे सवारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुख साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु वितो जिस दिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबत कर सवागे शब्द वाजे कला दूत कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तैस को हुआ तुद कर अनहद वाजे।

केस नो होर थाओ ना ही शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजों क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा सिलग कटे जान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सत्य सवारिया। कहे नानक यूं आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करें विचारिया, एक परम पूले फिरें दे जिस एक नाम।

मार्ग चलना, लब लोभ अंकार पद कृष्णा बहुत नानी बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए तिन चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जुग तू चलाए तिन चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिन्हें।

कर्म कमाए, सहसे जियो मलिन है तुझ संगम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर सो रहो चित लाए, कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले, तुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप वखानी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन कहे रवानी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा।

ज्ञान सब रतन है हीरा जित गराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो वे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वे एक कस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये मनो क्यों विसारिये एवड दाता जे अगन में आहार पहुँचावे उसनो क्यों पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारिये जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विललाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मनवन जारा हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत किते जिच्चे हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न कुछ ना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जाते अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

सुई मंथन हरिया होआ रसना रस समाई सच अलख विदानी ताकि जग कहीं न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रखते वाजा पौन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इतना दसवां द्वार दिखाया कहे अनेक रूप नाव नवने किस दा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखते वाजा पौन बजाया एहो साचा सोहेला साचे कर गावो गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच प्यावे सचो प्यावे जात रूपावे गुरमुख जिना बुझावे एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

यो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा, हर प्रभ करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाणा।

0: गुर जाए हर प्रभ पास जियो।
1: सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया,
0: मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुर

तारा अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द भी

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याय सब किछ पाय मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिय कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

पुरधार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसै दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारिय। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम अन

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

मैयल पूर रया एक निमख मनो ना विसरै। गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरै। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो। बल जाए नानक सुखें दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रे रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया।

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो असूकत के हर प्यास।

आए हरकंत जियो। ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया। वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया। हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत।

तिन बलिहारणे हर जप उतरे तीर छंत चरण बिराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मनते बिसरे तज आप सरणी।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे, अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

अफरे उतलियो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सरे

वणज व्यापार वणजय व्यापारी विण नावे कैसी पतसारी गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण में ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करने गुर विचार अगम अगोचर।

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई। जिनकी ती तिन कीमत पाई, होर क्या कही है किछ कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पियंत मुए नहीं जानिया, खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया। अस्थिर चीत मरण मन मानिया, गुर कृपा ते नाम पछानिया।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमतसार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

चार वर एक समाल, गुरुमुख मरण जीवन प्रभु नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरुमुख गावे गुरुमुख बोले, गुरुमुख तोल तुलावे तोले, गुरुमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरुमुख नाद वेद विचार, गुरुमुख मज्जन चज आचार, गुरुमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षों कर जाए छीजै दे खुले एक गंड छिया नित देखो जगहंड तूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूची जगत पुलाना।

पाया निर्मल नाव। जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ, जो उसारे सोटा सी तिस बिन अवरना।

क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटी है वड्डा आप तनी, गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे, अपने हाथ

आए वन तेन टूडत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहुमान की सतगुरु हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए ना

अंत न पारावार। राड़े रूड़ा हर जियो सोई, तिस बिन राजा अवर न कोई। राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर वसे मन माहे, गुर प्रसादी हर पाये।

क्यों गणी, खप खप मोए बिसंख, खसम पछाणे आपना, खूले बंद न पाए, शब्द मैली खरा तू, किमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन त्यान तू, आपे वसे शरीर, मन तन मुख जा पैसदा, गुण अंतर मन तीर, हौ मैं खपे खपाए सी, बीजो वथ विकार, जंत उपाय विच पायन।

मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान, हार डोर कंकन कने करथा की सीगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाये।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू।

कंद मूल आहारो खाये औदूबो ले ज्ञाने तीरथ नाये सुख फल पाये मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा।

खट दर्शन एक पंथा, इन विद मन समझाए पुरखा, बाहुर चोट न खाइए, नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगत इव पाइए, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौ मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी।

अरे सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एव मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर।

सब दे पाए। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी से वैसिक सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाणे जी जुगत सत जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचे वेद विचारी, गुरमुख परचे तरिय तारी, गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचे अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकत कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द पेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी

कट कट पेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अप

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहजान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए तो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पहाने, सच पैर आता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसै मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम आधारा, आपे पार उतारण हारा, गुर पर चै मन

तत्तो तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन

परे सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय पव जल संसारो। त्रैसत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई। नदर करे शब्द कट में वसे, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल।

होते ऊपर साचा, सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले, पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू, सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू, हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है, कित पोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे, सतगुर ते काल न ग्रास है रंग न राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद न राख्या शब्द न पाख्या, पवन न साध्या सच न अराध्या, अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म राम।

पियो आत्म सुख तारी, सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, इहो मन मैगल कहां बसियले, कहां बसे इहो पवना, कहां बसे सो शब्द औदू, ताको चूके मन का पवना, नदर करे ता सतगुर मेले, ता निज करवासा इहो मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणे आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इहो मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हूं ना जावे, जा इहो हिरदा दे ना होती, तो मन कैठे रहता, ना भी कमल अस्तंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर कहता, रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई।

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याय अंतर रखिए उधार नानक।

ऊपर जमदंड है दूजे पाए पथ खोए, हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जमदंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी सिक्ति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर शक्ति। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे भगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वरतदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। मैला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हो मैं छडे न कोए, गुर प्रसादी हो मैं छूटे जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहे, जीवन मुक्त क्यों होए। पैसा संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाये जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत के नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेश करेन। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

पाए नानक नौ निध पाए जे चले तिसै रजाए महला तीजा सहजे सतगुरु ना सेवियो विच होमे जन्म विनाश रसना हर रसना चखियो कमल।

पावे तिव हर गुण तास पौड़ी। छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी, आपे सृष्ट सब साजियन आप मत जीनी। सिमरत सासत साजियन पाप कुण गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी सत्य शब्द पतिनी। सब आपे आप वर्तदा।

मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा। बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी ना ही जाए। जे बहुत तेरा लोची है बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए। तिन जम्मन मरन ना चुकई।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर सब।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे पुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई, श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंड मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना

मिले वडाई, जिस कट पीतर शब्द रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या पूजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

राम पचाता बाहर मूल न खोजी है कर्माए विदाता मन मुखार मंदर की सार न जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वरदा।

जाए। जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करते लिख पाया, तब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किछ आपे

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी, गुरुशब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे, गुरुशब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा, अंधे कह राह दसे, अंधा होए सुजाए।

कोय जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जानिया सच करती सा सब किस सच्चो सा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है

सब किछ कर ही माए है बड़पागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपके मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंजाया कत गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया।

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्याइन से सच्चे जिन हर थर तन पल्ले। भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सोई सेविए सदा सदा जो दे। नानक सोई सेविए जित सेविए दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवे हैं, मन सुख वस आए पौड़ी। आपे

जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे ना लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

मन तन हुए निहाल बिंदक नगर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई।

भावे, अंदर मैल न उतरे हो मैं, फिर आवे जावे, नींद व्याप्या काम संतापया, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे ती ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ।

मुल ना किद्दा मैं कू सतगुर दिता तून वजाई थी जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा लगा रंग चरणार बिंद

तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा छपड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये

खतिए जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

रुसना काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी निरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे। एक बूंद पर तन मन देवो।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजमे, रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, यो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मले, ए रस मनु आरा।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग

लागे। जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्रह्मन बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे। राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्रह्मन मैं काशी जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जलहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा दे।

करम दया कर बारी। पवन काज सृजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीओ पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर मन पर तन प्रति निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कहे कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीयत हौ रे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाए रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

बालक पालन पौड़ी अले अंतर बाहर काज बिरुदी चीत सो बारिक राखी अले वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामे गावो गो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओ गो रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दोए सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो तीर्थ देख ना जल में पैसो जी जंत ना सतावो गो

गुरु प्रसादी पाया, नामा प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु होए लखाया, राम कली कर दूजा। बनारसी तप करे उंट तीरथ मरे, अगन दह काया कल्प की जय, अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

ओंकार सतगुरु प्रसाद। इड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तह राग मन मज्जन करे तुथाई। संतो तहां

तह बाजे शब्द अनाहद वाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, एस कला जो जाने पे हो, एते पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल थाती, जागत रहे

सो निजर चरे जगन्नाथ सो गोष्ठ करे चौमुख दीवा जोत द्वार पल्लू अनत मूल विचकार सर्व कला ले।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाए खरे।

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम के आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वड गे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवे तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुरु सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही, गुरु जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने।

पावै जन नानक के प्रभु वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रवधारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

लहरी मिल सल लय सलल समणे जो प्रभु किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक तौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हों बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर रहे कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होए पुनीत नानक दास बल बल कीत नट

हरे रहाओ, हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के शब्द सवारे, मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आ गए, मैं साधु चरण पखारे, सहस नेत्र नेत्र है प्रभु को, प्रभु एको पुरख निरारे, सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर, प्रभु एको गुरमत तारे, गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर्धारे, हर हर कथा बनी अकमीठी, जो गूंगा गटक समारे, रसना साध चखे पाए दूजे, हथी के लोग विकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अंग साध दिसारे, गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम संवारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे।

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लैकू

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनो मिल कलमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस पै कुब जाको ले बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बुलारे मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी जम शंकर मार बिदारे।

किछ ना समारे। जब पर मंदर आग लगानी तब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल न करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर तदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मिर्ग सिंहारे। बन बन टूट

प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे, प्रभु जन के सास निहारे, कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे, आपन आप आप प्रभु ठाकुर, प्रभु आपे सृष्ट सवारे, जन नानक आपे आप सब वरते, कर कृपा आप निस्तारे, नट महला चौथा, राम कर कृपा लेहु उबारे, ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी, हर हर लाज निवारे रहाओ, कर कृपा

परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे। मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख अलख

मूल विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं सातो तुम मंदर हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरुमति प्रभ पाया। हर पतित

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी, हर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगह बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलय गलायो। मत दे हर प्रब अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुर पाया, हर जप्यो परम पौ पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित थीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जान हूँ हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल बिख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी।

हवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार तन तन ते जन नानका।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक।

नैन दर्श पेखो निस्पोर। हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल। संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत। संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ। संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास। संत बचन मेरे मने मंत्र, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा के कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा के दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ता को जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। एक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुन गाओ। बलिहार जाए सदा नानक।

तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई। मूरख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमे पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रह न कोई किछ खा जाय किछ तर जाय जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली।

रणी कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

जाने तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पणत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाऊ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म ना

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे ना इस तन को मिले।

परमगत पाए। पंत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले तायो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पंत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट।

मानक मन में मनमार सी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे ते खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कबू न पावस सेवा करनी सारी नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्मायल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नाव पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किच आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियो नु गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए।

नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे सावास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा साला ही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू अंदिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख एको जानिए जा सतगुर दे बुझा

सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे दालद पंच सुदा में मिलियो भक्ति पाए तरे भगत वचल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समानी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस।

हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा

पहला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विकाटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलदियां नाल सखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापे जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठे मारो हर सेवक नेर ना जाई जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हौं अंदिन नाम लही करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डरपै तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखें बिदारे।

आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमयो बहु पांते अनक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्यागो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुक्ते सुन कर

लक्ष्मण विराते, पंच तत्व मिल पयो संजोगा, इनमें कवन दुराते, जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो मैं पाई, जन्म मरण उसी को है रे, ओहा आवे जाई, वरन चेहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारे, तब एक है एक अंकारा।

हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जाने हो जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक का सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पै सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभ को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारयो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रहे हो। मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो।

तारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक पत विचारियो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारियो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें आनथ तज सारंग तर पर।

तू पूला मुहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ। तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे हौ हौ करत बिहावत। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ। विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

गया था। अनुपव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मंत्रिष्णा बूजी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो पर।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूड़े रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़ियाई सोबा नानक खसम त्याय।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

और गोयलिया जी जन सगले पत्पलिया रहाओ एक कै श्रम कर गादी गढ़ है एक कै सुखने दाम न खड़ है राज कमाए करी जिन फैली ता कै संग न चंचल चलिया एक कै प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाप महतारी सुत नीत प्राप्त गोजी ता कै निकट न होई खलिया होए औतूत।

मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्तु सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मा

केला जात के केला। हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

मन तन बासना बहुत विस्तारा अहमेव मूठो बेचारा अनेक दोख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु स्वर्णी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप के काडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आख उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह का।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इक नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है होसी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर त्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

अतल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाए। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापे मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन सत ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही।

नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत ना।

चेत मन में तज सियानप छोड़ सगले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल।

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे पूरद मुख महा गुबारे सास सास समाले सोई उठे खत्म छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया।

स्वरूप प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदा।

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो, गनताहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी तैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई।

काल पास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही।

माई में मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो राव, जम को दंड पड़ो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, ए चिंता उपजी कट में जब, गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस में पाग्यो।

वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, हर सच्ची रख बहु कहा प्रम था के देखा, साचो साहिब निर्मलो मन माने एका, तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी, नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा, गुरपुर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा, अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा, जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति जद मथी है अमृत पाए नाम निदाना, मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना, हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार, गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार, गुरमति जग जीवन मन वसै

पाए कार कमावनी नित तोता थे सारा साची संगत थान साचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ साचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू टनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोई था ला दिया दिया।

ससुराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सो लिवलाए आवा गौन निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाइए दिख अंतर मन रोस पूर्व लिखिया पाइए किसनो दी जय दोष गुरमुख गारर जे सुने मने नाव संतोख मागर मच्छ पाइए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाइए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसै बिख जाए जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हों मैं जाए तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उड़े ताए कावार गुर मिले खसम पछाणिए है कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपुर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए गुर बिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू धूप गीत साध चाक

नानक नाम ना विसरे, जो तिस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, एहो मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम बिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमा।

गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर है। तेहो मन अवगुण बांधया सहो देह शरीर है। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है। क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा। जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहा। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ। जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया मेले मन चाओ। कीता चासा लाइए कर देखे सोई। जिनकी आसो मनोसे मैं अवर न कोई। सो साचा सालाइए साची पत होई। पंडित पर न पहुंचई बहु आल जंजाला। पाप पुन दे संग में खुदिया जम

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे इत उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे दिन गुण सब दिन आप पछाने दिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर सबदे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुरु प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रेण हरे इको ओंकार।

रे दोहागनी सावरे क्यों जाओ, मैं गल औगन मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सावरे करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास, लेफ निहार

एक जोत दो नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए। सतगुर कह पाने।

जाने जिसनो नगर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुर के शब्द बिचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों दुरमत होवे। रंग सो नित्र

जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे वेखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाभ चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार दी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन न की नो रोस काज ओआ को ले सवार्यो तिल न दी नो दोस मन मेरे राम रो नितनीत दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुवाए चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला पालिये, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविद वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिये, जागत सूता परम विगूता बिन गुरमुक्त ना होई है मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिये, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने कट कट राम हे आलिये, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिये, छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचे तो पौ मन माही, किस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चौर टालिये, जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिये, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिये। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन चोड़ वजे सा, करण करीम न जातो करता तिल पीड़े ज्यो काणिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे,
जिनकी ताक से ना जानी अंधा ता दुख सह प्राणिया खालक था वो पुल्ला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया।

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझे त्रिभुवन सूझे, मनसा मार मने क्यों लूझे। जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल उपाय समाए, अलख ना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल केदारा, काशी कांति पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैर आई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई। परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिरजनहार मुरार है। जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

होर न दिसे वेद पुराणी पूंजी सात सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर्दे खून लिवलाई है मारू महला पहला दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर बिन फिर नींद न पाई है अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ बढ़ाई है काम क्रोध अंकार निवारे तत्सर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यो लूजे मन सामने समाई है माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जमन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देखे दुख दर्द शरीरों जाई है निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुबर आत्म राम सखाई है मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना पर थाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है।

हौ मैं गणत गवाई है, गणत गणिये सहसा जी है, क्यों सुख पावे दुवे पी है, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपूरे ते पत पाई है, जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल न काई है, जीव रसाए साचे राती, हर प्रव संगी पौ ना पराती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है, रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कप देखो तेरी सरना, दुख सुख दे तू।

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे।

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुरपुरा गुर का शब्द मने सोसूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे ना

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे।

लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगे पैदे गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बित्रे दुख पाई है पोजन साच मिले आघाई नाम रतन साची वड़ियाई चीने आप पछाण।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पाव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे सब रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपार है, तुंदू कार निरालम बै

गर्भ कुंडल में उर्द सियानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले अंतर उधर मजारा है चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति करवा।

काली हुफुन तौले आए, विणनावे गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न फूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिरद पया तन खीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वासना पाए।

किरत पछाणे गुर कै संग शब्द कर जाने किस ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा है साच बिना दर्श जै न कोई साच शब्द कै जय पत होई आपे बख्श लए तिस पावे हो मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाणे जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे पौन पानी बैसंतर गाजे मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाहे नाम विसार दोख दुख सही है हुकुम पया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे जो जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाये जैसा की तै तैसो पाये सतगुर बाजो मुक्त न होई केत बांदा ग्रफ दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा ली जय तिल जो पीड़ी मात पिता कलत्र फुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त न कीना है मीत सके केते जग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर के शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, क्यों आत्म रामे लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिभुवन सेवक बड़ो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सिर।

उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख न मिटे, जमदर अंध खुआ।

नरक पते अज्ञान अंधेरे, कर्म राय की बाकी ली जाए, दिन हर का नाम विसारा है, सूरज तपे अगन बिख चाला, अपत पशु मन मुख बेताला, आशा मनसा कूर कमावे, रोग बुरा बुरे आ रहा है, मस्तक पार कलर

जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे। करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतारा।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है।

नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है मारू मैला पैला, कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखां फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत मिल काया कीनी, तिस में राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यो निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहू मूके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरयो पार असारा है, बिन गुर साकत कहो को तरया, हो मैं करता पव जल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी।

चाले बिखला दे चार बिकार आहे। हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जा।

तुम्हारी। तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई। तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला। खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे। सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन। सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे। तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खे

कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है। अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन में पंच तत्व करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है। तिव मन पीजे शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक की जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है। दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले।

हाकत फांसी पड़े इकेला, जम वस्किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुरु बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्मे इंद्र महेश ना जाने, सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है, ओजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है, सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन कर चतर करे विचारे, आपे करता कर कर

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आखे आपे दाना सच पराख है। जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ती बाणी सुन कहिए को अंत न जाने। जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे ते सर पर मरना सिर्त पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख

अखर जिस तन पल्ले शब्द सचै ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

दुख में मरना, दुख ना मिटे बिन गुर की सरना, दुखी उपजे दुखी दिन से, क्या ले आया क्या ले जाहा है, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जमतारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहा है, हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा, और न दूजा कहा है, ओढ़ न कथने सिफ सजाई।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी काया नगर नगर घर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस समाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर सब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर खापे हुक्म रजाई दसने पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इकवासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरे कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पौने खेल किया सब खाई कला खिंच टहाएंदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएंदा पंखी पंच उदर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपो कह करवाएदा।